कृष्णकांत नांदगांवकर की भक्ति रचना भी आपने सुनी गीता दाता के स्वर में, जिसके संगीतकार थे विजय पवार। कार्यक्रम में आइए अब वीणा भक्ति मंडल द्वारा प्रस्तुत ये भक्ति रचना सुनते हैं।

वीणा भक्ति मंडल द्वारा प्रस्तुत ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं श्रीकांत पारगावकर के स्वर में संत तुकाराम महाराज की ये भक्ति रचना।

संत तुकाराम महाराज की भक्तजना अभी आपने सुनी श्रीकांत पारगावकर के स्वर में। कार्यक्रम की अगली हिंदी भक्ति रचना है संत मीराबाई की, आइए समूह स्वर में सुनते हैं।

अभी आपने संत मीरा बाई की भक्ति रचना समूह स्वर में सुनी। कार्यक्रम के अंत में आइए अब सुनते हैं वसंत खरे के स्वर में संत कामपात्रा की ये भक्ति रचना।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम अभी आपने सुना। यह आकाशवाणी पुणे का निर्माण था, जिसे आपने सुना रागम 24/7 DTH चैनल पर। सुनते रहिए भारतीय संगीत, हर समय हर पल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग अहिर भैरव में ख्याल गायन. आज के कलाकार हैं पंडित तुषार दत्तो. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं सुमंत चट्टोपाध्याय और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं देवाशीष अधिकारी. तो आइए सुनते हैं राग अहिर भैरव में ख्याल, कलाकार पंडित तुषार दत्तो.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस मॉर्निंग वी फर्स्ट प्रेजेंट आ हिंदुस्तानी वोकल रेंडिशन. लिसन टू अ ख्याल इन राग अहिर भैरव बाई आवर आर्टिस्ट पंडित तुषार दत्ता. He is accompanied on the tabla by Sumanta Chattopadhyay and on the harmonium by Devashish Adhikari. Now, listen to a khayal rendition in Raag Ahir Bhairab by our artist Pandit Tushar Dutta.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग अहीर भैरव में ख्याल गायन सुन रहे थे। आज कलाकार थे पंडित तुषार दत्तो। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे सुमंत चट्टोपाध्याय और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे देवाशीष अधिकारी। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आइए अब सुनते हैं राग अहीर भैरव में सितार वादन। आज के कलाकार हैं अंजन साहा। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं तरुण रॉय। तो लीजिए प्रस्तुत है सितार पर राग अहीर भैरव, कलाकार अंजन साहा।
1: यू आर लिसनिंग टू अ ख्याल रेंडिशन इन राग अहीर भैरव by our artist Pandit Tushar Datta. He was accompanied on the tabla by Sumant Chattopadhyay and on the harmonium by Devashish Adhikari. This is Ragam, 24/7 on DTH, anytime Indian music. Continuing the concert, now listen to a sitar recital of Rag Ahir Bhairab by our next artist Anjan Saha. The accompanying artist is Tarun Roy on the tabla. Now, listen to a sitar recital of Rag Ahir Bhairab by our artist Anjan Saha.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग अहीर भैरव में सितार वादन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे अंजन साहा। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे तरुण रॉय।
1: ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
2: यू आर लिसनिंग टू अ सितार रिसाइटल ऑफ राग आहिर भैरव बाय आवर आर्टिस्ट अंजन साहा। Accompanying artist was Tarun Roy on the tabla. This program was recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। कार्यक्रम के प्रारंभ में सुनते हैं मिलिंद तुरानकर का जल तरंग वादन, राग मालकंस।

श्रोताओं, अभी अपने मिलिंद तुरानकर का जलतरंग वादन सुना। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब सुनते हैं फैयाज हुसैन ने वायलिन पर बजाया राग अभोगी।

अभी आपने फैयाज हुसैन ने वायलिन पर बजाया राग अभोगी सुना। आइए सुनते हैं फैयाज हुसैन का वायलिन पर बजाई पीलू धुन।

अभी आपने फैयाज हुसैन का वायलिन वादन सुना। रागम 24/7 डीटीएच के लिए ये आकाशवाणी पुणे की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं रागम 24/7 डीटीएच चैनल पर भारतीय संगीत हर पल हर समय।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है गुलाम दस्तगीर खां का सितार पर बजाया राग भैरों में आलाप और जोड़. विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now bring you a sitar recital by Gulam Dastagir Khan. He begins his recital with an alap and jod in rag bhairav. The vilambit and drutgat are set to teen taal. He is accompanied on the tabla by Vinod Pathak.

0: अभी आप गुलाम दस्तगीर खां का सितार पर बजाया राग भैरव सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने। और लीजिए अब सुनिए राग शुद्ध सारंग, विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है।
1: You just heard a rendition in Raag Bhairav on the sitar by Ghulam Dastagir Khan. He now presents Raag Shuddh Sarang. The Vilambit and Drutgat are set to Teen Taal.

0: अभी आप गुलाम दस्तगीर खां का सितार पर बजाया राग शुद्ध सारंग सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: Just heard राग शुद्ध सारंग performed by गुलाम दस्तगीर खां। He was accompanied on the tabla by विनोद पाठक। This program was presented by All India Radio, Delhi।

Satani da bama gari gani ni da bama gada da bani.

Pada.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, यह है रागम 24/7 DTH चैनल पर हम सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं शहनाई वादन। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं मधुकर गोलवलकर के तार शहनाई वादन से। आपने प्रस्तुत किया है राग भटियार। विलंबित गत एक ताल में निबद्ध है और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं माणिकराव पोपटकर। सुनते हैं मधुकर गोलवलकर का तार शहनाई वादन राग भटियार।

श्रोताओं, हम सुन रहे थे मधुकर गुड़वलकर का तार शहनाई पर बजाया हुआ राग भटियार। आपके साथ तबले पर थे माणिक राव पोपटकर। आइए अब सुनते हैं मधुकर गुड़वलकर का तार शहनाई पर बजाया हुआ राग नट भैरव, ताल एक ताल। आपके साथ तबले पर है चंद्रकांत कामत। सुनते हैं तार शहनाई पर राग नट भैरव, कलाकार मधुकर गुड़वलकर।

श्रोताओं, तार शहनाई पर हम सुन रहे थे राग नट भैरव। कलाकार थे मधुकर गोलवलकर। आपके साथ तबले पर थे चंद्रकांत कामत। श्रोताओं, शहनाई वादन के इस कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं मधुकर गोलवलकर की तार शहनाई पर बजाई हुई धुन। तबले पर है चंद्रकांत कामत।

श्रोताओं, शहनाई वादन के कार्यक्रम में हम सुन रहे थे मधुकर गोलवलकर की तार शहनाई पर बजाई हुई धुन। तबले पर थे चंद्रकांत कामत। यह आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मिती थी। रागम 2400 घंटे डीटीएच चैनल पर भारतीय संगीत।

0: म्यूजिक चैनल
1: रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी हम आपको सुनाएंगे सरोद वादन। राग है झिंझूटी और कलाकार हैं तनुश्री चटर्जी। इनके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं तरुण रॉय।
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनीटाइम इंडियन म्यूजिक। This evening we present a Hindustani instrumental recital. Listen to a sarod recital in the rag Chinchoti. Our artist is Tanushree Chatterjee. Accompanying our artist on the tabla is Tarun Roy. Listen now to the sarod in the rag Chinchoti. Our artist Tanushree Chatterjee.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग झिंझुटी पर तनुश्री चटर्जी का सरोद वादन सुन रहे थे। इनके साथ तबले पर संगत कर रहे थे तरुण रॉय। ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a sarod recital in the rag Jhinjhoti. Our artist was Tanushri Chatterjee. Accompanying our artist on the tabla was Tarun Roy. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

आज के रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं एस सुप्रदीप का बांसुरी वादन। एस सुप्रदीप एक प्रतिभाशाली एवं सिद्धहस्त बांसुरी वादक हैं और संगीत की एक प्रतिष्ठित परंपरा से जुड़े परिवार से आते हैं। आप सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक एस ए शशिधर के सुपुत्र एवं शिष्य हैं। आपने अपने पिता के मार्गदर्शन में शास्त्रीय संगीत की बारीकियों और समृद्ध संगीत परंपरा को आत्मसात किया है। सुप्रदीप ने छोटी उम्र से ही संगीत के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण का परिचय दिया है। आपने राज्य स्तरीय जूनियर और सीनियर संगीत परीक्षाएं सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की हैं और दोनों में रैंक प्राप्त की है। आपकी संगीत प्रतिभा और संभावनाओं को सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई प्रतिष्ठित छात्रवृत्तियों के माध्यम से भी मान्यता मिली है। आप आकाशवाणी बेंगलुरु के ए ग्रेड कलाकार हैं। आपकी कला प्रस्तुति के माध्यम से आपने विविध

0: श्रोताओं तक शास्त्रीय संगीत पहुंचाने तथा उसके प्रचार प्रसार में योगदान दिया है। आपकी कला यात्रा भारत तक ही सीमित नहीं है, आपने अपने पिता के साथ विदेशों की संगीत यात्राओं में भाग लिया है, जहां आपने बांसुरी की युगल प्रस्तुति दी। प्रसारण और डिजिटल माध्यमों में भी सुप्रदीप ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है।
1: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। वी ब्रिंग यू फ्लूट रिसाइटल बाय यस सुप्रदीप। यस सुप्रदीप इज अ टैलेंटेड एंड एकम्प्लिश्ड फ्लूटिस्ट हु बिलोंग्स टू अ डिस्टिंग्विश्ड फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस। ही इज द सन एंड डिसाइपल ऑफ रिनाउंड फ्लूटिस्ट यस ए शशिधर एंड हैज इम्बाइब्ड द नुआंसेस ऑफ क्लासिकल म्यूजिक थ्रू द रिच ट्रेडिशन एंड गाइडेंस ऑफ हिज फादर। Supradeep has demonstrated his dedication and commitment to music from an early age. He successfully completed the state junior and senior music examinations, securing ranks in both. His musical talent and promise have been recognized through prestigious scholarships from the Center for Cultural Resources and Training and the Ministry of Human Resource Development. He is an A-grade artist of Akashwani Bengaluru. Through his musical performances, he has reached diverse audiences and contributed to the promotion and propagation of Indian classical music. His artistic journey extends beyond the Indian stage. Supradeep has accompanied his father on musical tours to the abroad, where they presented flute duet concerts. Supradeep has also made his presence felt in the broadcast and digital space.
0: आज की इस प्रस्तुति में आपके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर जी वेंकटेश जोशियर, मृदंगम पर के वी रविशंकर शर्मा और मोरसिंग पर लिखित के एम।
1: इन टुनाइट्स परफॉर्मेंस ही इज एकम्पनीड ऑन वायलिन बाय जी वेंकटेश जोशियर, ऑन मृदंगम बाय के वी रविशंकर शर्मा एंड ऑन मोरसिंग लिखित के एम।
0: एस सुप्रदीप अपने बांसुरी वादन का आरंभ वल्लभा नायकस्य से कर रहे हैं। यह मुत्तुस्वामी दीक्षितर की सुंदर रचना है, जो राग बेघड़े और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: यस सुप्रदीप बिगिन्स हिज फ्लूट रिसाइटल विद वल्लभा नायकस्य, अ ब्यूटिफुल कॉम्पोजिशन ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितर, सेट इन राग बेघड़े एंड रूपक ताला।

0: अगली प्रस्तुति है मरिवेरे दिक्केवरु। यह पठनम सुब्रमण्य अय्यर की लोकप्रिय रचना है, जिसे राग लतांगी और खंड चापुताल में प्रस्तुत किया जा रहा है।
1: द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन इज मरिवेरे दिक्केवरु, अ पॉपुलर कॉम्पोजिशन ऑफ पठनम सुब्रमण्य अय्यर, सेट इन राग लतांगी एंड खंड चापुताला।

0: रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आप सुन रहे हैं एस सुप्रदीप का बांसुरी वादन। आपके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर जी वेंकटेश जोशेर, मृदंगम पर केवी रविशंकर शर्मा और मोरसिंग पर लिखित केएम। अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए एस सुप्रदीप अब प्रस्तुत कर रहे हैं रा रा राजीव लोचना। यह मैसूर वासुदेवाचार्य की मधुर रचना है जो राग मोहनम और आदि ताल में निबद्ध है।
1: इन द रविवासरिया अखिल भारतीय संगीत सभा यू आर लिसनिंग टू फ्लूट रिसाइटल बाय यस सुप्रदीप। ही इज अकंपनीड ऑन वायलिन बाय जी वेंकटेश जोशियर, ऑन मृदंगम केवी रविशंकर शर्मा एंड ऑन मोरसिंग लिखित केएम। कंटिन्यूइंग हिज परफॉर्मेंस यस सुप्रदीप नाउ प्रेजेंट्स रा रा राजीव लोचना, अ कॉम्पोजिशन ऑफ मैसूरु वासुदेवाचार्य, सेट इन राग मोहना एंड आदिताला।

0: अभी आपने तनी आवर्तनम सुना, जिसे मृदंगम पर केवी रविशंकर शर्मा और मूर सिंह पर लिखित केएम ने प्रस्तुत किया।
1: दैट वॉज तनी आवर्तनम प्रेजेंटेड ऑन मृदंगम बाई केवी रविशंकर शर्मा एंड ऑन मूर सिंह बाई लिखित केएम।
0: एस सुप्रदीप अपने बांसुरी वादन का समापन कन्नड़ भक्ति रचना तंबूरी मीठी दवा से कर रहे हैं। यह महान संत कवि पुरंदर दास की रचना है और राग सिंधु भैरवी तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: यस सुप्रदीप कंक्लूड्स हिज फ्लूट रिसाइटल विद अ टाइमलेस कन्नड़ा डिवोशनल कॉम्पोजिशन तंबूरी मीठी दवा कंपोज्ड बाय द ग्रेट सेंट पोएट पुरंदर दासा सेट इन राग सिंधु भैरवी एंड आदिताला।

0: रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आप सुन रहे थे एस सुप्रदीप का बांसुरी वादन। आपके साथ संगत कर रहे थे वायलिन पर जी वेंकटेश जोशेर, मृदंगम पर केवी रविशंकर शर्मा और मोरसिंग पर लिखित केएम। यह कार्यक्रम आकाशवाणी बेंगलुरु का योगदान था, जिसे आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो से आपके लिए प्रस्तुत किया गया।
1: इंदिरा विवासरिया अखिल भारतीय संगीत सभा। You were listening to flute recital by S. Supradeep. He was accompanied on violin by G. Venkatesh Joshiar, Bridangam by K. V. Ravishankar Sharma, and on Morsing, Likhit K. M. This program is a contribution of Akashwani Bengaluru, brought to you from the studios of Akashwani Delhi.
2: Namaskar. Akashwani Samachar ke saath, main Ashutosh Mishra.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: यह है रागम DTH पर हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में सितार वादन. कलाकार हैं पंडित गोपाल शंकर मिश्र. राग है यमनी बिलावल. इसमें आपने आलाप जोड़ के बाद दो गतें प्रस्तुत की हैं जो क्रमशः रूपक एवं तीन ताल में निबद्ध हैं. आपके साथ तबले पर संगत की है उस्ताद इस्माइल दद्दू खान ने. दिस इज रागम 24/7 DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. नाउ लिसन टू हिंदुस्तानी सितार रिसाइटल बाय पंडित गोपाल शंकर मिश्र. द रेंडिशन कमेंसेस विद द राग यमनी बिलावल इन विच ही रेंडर्स टू कंपोजिशन सेट टू विलंबित रूपक ताल एंड ध्रुतगत इन तीन ताल.

अभी आप सुन रहे थे राग यमनी बिलावल। कलाकार थे पंडित गोपाल शंकर मिश्र। यू आर लिसनिंग हिंदुस्तानी सितार रिसाइटल बाय पंडित गोपाल शंकर मिश्र। यह है रागम DTH पर हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे राग जयंत मल्हार। विलंबित तथा द्रुत दोनों गतें 3 ताल में निबद्ध हैं। नाउ द आर्टिस्ट रेंडर्स राग जयंत मल्हार।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में राग जयंत मल्हार। कलाकार थे पंडित गोपाल शंकर मिश्र। तबले के साथ संगत कर रहे थे पंडित यदुनंदन गोस्वामी। हर पल हर समय DTH रागम के लिए ये थी आकाशवाणी भोपाल केंद्र की भेंट। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी सितार रिसाइटल बाय पंडित गोपाल शंकर मिश्र। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आइए सुनते हैं अभिजीत राय चौधरी का बजाया सरोद पर राग नट भैरव. विलंबित एवं द्रुत दोनों बंदिशें तीन ताल में निबद्ध है. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्री अरुण कुमार भट्ट. इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी आर

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे अभिजीत राय चौधरी का बजाया सरुद पर आगनट भैरव। आइए अब सुनते हैं उन्हीं का बजाया सरुद पर राग चारुकेशी। तबले पर संगत कर रहे हैं श्री अरुण कुमार भट्ट। दिस इज रागम 24/7 DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। नाउ ही इज गोइंग टू प्रेजेंट राग चारुकेशी। अकॉम्पनिंग हिम ऑन तबला श्री अरुण कुमार भट्ट।

अभी आप सुन रहे थे सरोद पर बजाया राग चारू केशी। वादक कलाकार थे अभिजीत राज चौधरी। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का बजा सरोद पर राग मिश्र भैरवी। नाउ यू आर लिसनिंग श्री अभिजीत राय चौधरी इन सरोद। ही वॉज प्लेइंग राग चारू केशी। नाउ ही इज गोइंग टू प्रेजेंट राग मिश्र भैरवी। अकॉम्पनिंग हिम ऑन तबला श्री अरुण कुमार भट्ट।

रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे अभिजीत राय चौधरी का बजाया सरोद पर राग मिश्र भैरवी। तो कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से। दिस इज रागम 24/7 डीटीएच एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। यू आर लिसनिंग सरोद बाय अभिजीत राय चौधरी। दिस प्रोग्राम वॉज कंट्रीब्यूटेड बाई ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है उस्ताद मजहर अली खां और उस्ताद जवाद अली खां का गाया राग गुनकली. विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है. बोल हैं रहीम नाम तेरो और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है. बोल हैं ऐ करतार. तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने, सारंगी पर दिलशाद अहमद ने और हारमोनियम पर जमीर अहमद ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present a vocal recital by Ustad Mazhar Ali Khan and Ustad Jawad Ali Khan. They begin their recital with a rendition in Raag Gunkali. The Vilambit Khayal is set to Ek Taal and the words are Rahim Naam Tero. The Drut Khayal is set to Teen Taal and the words are Ae Kartar. They are accompanied on the tabla by Vinod Pathak, on the sarangi by Dilshad Ahmed and on the harmonium by Zameer Ahmed.

अभियाक उस्ताद मजहर अली खां और उस्ताद जवाद अली खां का गाया राग गुनकली सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने, सारंगी पर दिलशाद अहमद ने और हारमोनियम पर जमीर

0: अहमद ने। और लीजिए अब सुनिए इनका गाया राग तोड़ी। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं अब मोरी राम, और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने, सारंगी पर दिलशाद अहमद ने और हारमोनियम पर जमीर अहमद ने।
1: यू जस्ट हर्ड उस्ताद मजर अली खान एंड उस्ताद जवाद अली खान परफॉर्मिंग राग गुनकली। दे वर अकंपनीड ऑन द तबला बाय विनोद पाठक, ऑन द सारंगी बाय दिलशाद अहमद एंड ऑन द हारमोनियम बाय जमीर अहमद। उस्ताद मजर अली खान एंड उस्ताद जवाद अली खान विल नाउ परफॉर्म राग तोड़ी। द विलंबित ख्याल इज सेट टू एक ताल एंड द वर्ड्स आर अब मोरी राम। द द्रुत ख्याल इज सेट टू तीन ताल। द अकंपनिस्ट्स आर विनोद पाठक ऑन द तबला, दिलशाद अहमद ऑन द सारंगी एंड जमीर अहमद ऑन द हारमोनियम।

0: अभी आप उस्ताद मजहर अली खां और उस्ताद जवाद अली खां का गाया राग तोड़ी सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने, सारंगी पर दिलशाद अहमद ने और हारमोनियम पर जमीर अहमद ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू जस्ट हर्ड अ वोकल रेंडिशन इन राग तोड़ी बाय उस्ताद मजहर अली खां एंड उस्ताद जवाद अली खां। दे वर अकंपनीड ऑन द तबला बाय विनोद पाठक, ऑन द सारंगी बाय दिलशाद अहमद एंड ऑन द हारमोनियम बाय जमीर अहमद। दिस प्रोग्राम वॉज प्रेजेंटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए संजीवनी जोशी और साथियों के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना।

0: अभी आप सुन रहे थे संजीवनी जोशी और साथियों के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना। अब सुनिए श्रीकांत पायगांवकर के स्वर में दी आ कुलकर्णी की रचना। संगीतकार है राम कदम।
1: जय

आ कुलकर्णी की रचना आप सुन रहे थे श्रीकांत पारगावकर के स्वर में। संगीतकार थे राम कदम। भक्ति संगीत के कार्यक्रम में अब सुनिए मालती पांडे के स्वर में कवि ब्रह्मानंद की रचना।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे मालती पांडे के स्वर में कवि ब्रह्मानंद की रचना। कार्यक्रम की अगली रचना है संत तुकाराम महाराज की, जिसे गाया है बबनराव नावड़ीकर ने।

आप सुन रहे थे बबनराव नावड़ीकर के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रागम 24/7 DTH चैनल पर। कार्यक्रम में अगली भक्ति रचना है संत मीराबाई की, जिसे गाया है कीर्ति शिलेदार ने।

श्रोताओं, अभी आपने कीर्ति शिलेदार के स्वर में संत मीराबाई की भक्ति रचना सुनी। अब सुनिए संत एकनाथ महाराज की भक्ति रचना विठ्ठल शिंदे के स्वर में।